जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 एफएम जीवन यात्रा जीवित यईमा किप्स एफएम अलिना पा छिगु जीवनया पला पला नेपकीमा किप्स एफएम छिगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम

जीवन यात्रा शीतलता की माँ, जीवन यात्रा जीवित यही माँ, अलेना पाँच छिगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ, किप्स एफएम छिगु जीवन या सदायम पासा, किप्स 98.3 एफएम

Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 MHz मा

0: बिहीबार दिउँसो 3 बजे शनिबार साँझ 5 बजे
1: मात्र किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा
2: मेरो मन छैन बसमा तिमलाई 10 दिन्छु 10 मा केलाई गरिराको प्रश्न फसे तिम्रो जवानीमा मस्त
3: केही नौलो
4: रोचक
3: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरू किप्स 98.3 एफएम मा कार्यक्रम रेडियोमा रोचक रेडियोमा रोचक
4: हरेक सोमबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र बुधबार बेलुकी 8 देखि 9 बजेसम्म सुन्न नभुल्नुहोला मात्र किप्स 98.3 एफएम मा
5: क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब
6: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग
7: दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल
6: बेस्ट रोमांटिक हिंदी सॉन्ग्स Every Sunday, 9 p.m., Tuesday, 6 p.m.
7: Pehla nasha, pehla khumar.
6: Station, KIFS FM 98.3 MHz.

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12.

0: change the station. We'll be right back. You are listening to KIPPS FM 98.3 MHz, your companion. Just tune in.
1: Listen to your favorite classic English songs only on English Retro Numbers. English Retro Numbers every Monday 9 p.m. and Wednesday 9 a.m. Station KIPPS FM 98.3 MHz.
2: Best romantic Hindi song.
3: Best romantic Hindi song.
2: Best romantic Hindi songs every Sunday 9 p.m. Tuesday 6 p.m. Station KIPPS FM 98.3 MHz.
4: अब ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 200 एम्पियर का ट्युबुलर ब्याट्रीहरू सुपथ मूल्यमा, तपाईँका पुराना इन्भर्टर ब्याट्रीहरूको एक्सचेन्ज सुविधा। तपाईँका पुराना इन्भर्टर ब्याट्रीहरू ल्याउनुहोस् र नयाँ ट्युबुलर ब्याट्रीहरू लग्नुहोस्। साथै तपाईँको इन्भर्टर युपिएसहरू मर्मत समारका लागि सम्झनुहोला।
5: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678, 5302678। लोकेसनको लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
6: What's the secret to success?
7: Simple. Say yes to radio advertising.
6: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
7: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
6: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
8: KIPPS 98.3 FM मा गजल संसार।
9: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
8: गजल संसार।
9: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
4: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे
10: Bali Pop Flashback every Sunday and Tuesday 10 p.m., Thursday 9 a.m., and Saturday 5 p.m.

0: every Tuesday 12 PM and Thursday 8 PM.
1: पुरै एक घंटा तीनोटा मूवीज का सुपरहिट गीत
2: इन वन
0: एवरी सैटरडे 9 AM एंड थर्सडे 6 PM
3: यो हो गिफ्ट्स 98.3 FM तपाई सँगको सहयात्रा
4: नयाँ नयाँ नेपाली गीत संगीत

0: Every Tuesday and Friday, 1 p.m. Wednesday, 10 p.m.
1: Ki mile bhane ka sarate phoera ma
2: Nepali Super Hits
0: Only on Kips FM 98.3
3: Raja Matiwa Matina Ewa Ne Pushe Changutu Khele
4: नेपाल भाषाया न्याय पुसे चौमेता
5: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़

0: 104.3 FM.
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम.
2: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए.
1: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3.

0: Life-changing quotes. शान्ति आफै भित्रबाट आउँदछ, यसलाई बाहिर नखोज। यो उपदेश हो भगवान गौतम बुद्धको।
1: टिप्स 98.3 एफएम मा गजल संसार।
2: मुझसे मिलने क्षमा जलाकर आज महल में आज
1: गजल संसार।
2: गुम का खजाना तेरा भी है मेरा भी।
0: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे नेपाली चलचित्रका सदाबहार गीतहरू,
3: मेरो निन्द्रा भोका तिर्खा रात दिनको।
0: Wednesday Saturday 2 p.m. Thursday 10 p.m. only on Kips FM 98.3।

0: इट्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर।
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार।
0: एवरी फ्राइडे 12 पीएम।

0: bye. Don't talk. Keep 98.3 at hand.
1: सौंदर्य, स्वास्थ्य र जीवन शैली संबंधी एक विशेष कार्यक्रम ब्यूटी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज मा शनिबार बेलुकी 7 बजे मंगलबार बिहान 7 बजे र बुधबार दिउँसो 3 बजे
2: किप्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स Pop Hour.

0: Presque sata bane balbari soda hazar bane bari hotspot haruma free internet ko mazalin hos.
1: Our life is always on the happening. Kuru kuru.
0: Connect to my world link and always stay connected wherever you are.
2: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी.
3: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ. फोन नम्बर 5302678 5302678. लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्. ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स.
4: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
5: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
4: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
6: Radio station that keeps you cool, keeps you alive, and keeps you entertained. Keeps FM 98.3 megahertz. Just tune in.
7: Are you ready to turn up the volume and rock out like never before? Rock fever. Rock fever. Rock hits of all time.

0: Don't change the station. We'll be right back. You are listening to Kips FM 98.3 MHz. Your companion. Just tune in.
1: नेपाली सांगीतिक क्षेत्र का गीत संगीत को साथ में रमाइला सेगमेंट्स हरू कार्यक्रम
2: म्यूजिक मज़ा म्यूजिक मज़ा
1: प्रत्येक मंगलवार बेलुकी 8 बजे देखि 9 बजे सम्म र प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म मात्र किप्स 98.3 एफएम मा

0: your home.
1: KIPS 98.3 FM. तपाईं सँगको सहयात्रा.
2: पुरै एक घंटा तीनवटा मुवीज का सुपरहिट गीतहरू.
3: 3 in 1.
4: Every Saturday 9 a.m. and Thursday 6 p.m.
5: KIPS 98.3 FM मा गजल संसार.
6: मुझसे मिलने शमा जलाकर आज महल में आज
5: गजल संसार.
6: गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी.
7: हर एक शनिवार बिल्की 10 बजे
8: What's the secret to success?
9: Simple. Say yes to radio advertising.
8: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
9: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
8: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.

0: You can dance.
1: You can sing. All you gotta do is
2: just tune in.
1: KIPS FM 98.3 MHz, your companion.
3: The radio of new generation.
4: 아밀라이 순호스 www.kipsfm.com 마르폿 Just tune in radio 나야 generation ko
5: 하즈르 न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कूटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
6: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
7: सुनौलो याद सुनौलो गीत बॉलीवुड गोल्डन हिट्स किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा आइतबार र मंगलबार दिउँसो 4 बजे सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईंकी रेडियो किप्स एफएम मा

0: साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: व्हाट्स द सीक्रेट टु सक्सेस?